सकें पी अब तल बड़ लै जाऊ भने जई तो सात दिन सकिंदन अब माथी बड़ छोटकरी बड़ लाचु नारायण।

பாயிலே சபை புதாத்தினி நிறை விபூதி சிருஷ்டிகா பசிபேரமா பரலாயமா மைய கிரந்து பகாத் முதேகீ பாயக கோய் சைனா கஹேரே நிறை சருஜகா सतेर जर तमगण पञ्चय महाभूत दशै सृष्टिका पहिले मै थिए भगत कोही थिएनन् अरु जो देख्छौ अहिले सबै बुझ तिमी मेरै विभूतिहरु सृष्टिका पछि फेर महापरलायमा मै ग्रहन्छु भगत मुदी

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल कैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: नमस्कार
1: रेडियो शैलम सामुदायिक एफएम बैंड थोपलो 7 MHz म बदे प्रसाद सापकोट आज विक्रम सम्मत 2083 साल आश्विन कृष्ण पितृपक्ष सन 2026 सेप्टेम्बर 30 तारीख आश्विन 14 गते बुधवार चौथी तिथि
0: अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरी आओ साक्षेण कल्पय भरी

राजा नौश का इशारे दौलत से परिपूर्ण होस पवन जाई नई परे का घरे मंडा खुन सवाले दुर्योधन समा

0: धोका होला है जीवन को अंतिम छिन में धोका होला है। भाषा का डोला में चढ़ेर सेतो पछौरा ओढ़े जंती जान खुरुरु आगो लाग्छ हुरुरु यो अमूल्य जीवन गईगो बितेर कृष्ण कृष्ण बनाउला संसार पार तरौला भन्दा भन्दा यो अमूल्य जीवन बिगैगो बितेर यो अमूल्य जीवन गईगो बितेर। हस्त धन्यवाद।
1: परिचित अपरिचित मित्रजनहरूमा म शिवको नमस्कार। नेपाल